सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

0: भाग्य शादी कर लो।
1: यार क्या बोल रही है तू? हम शादी पापा की मर्जी से ही करेंगे, और अगर हमारा प्यार सच्चा होगा
2: तो महादेव हमें खुद मिलाएंगे।
3: मैंने सुना है एक जगह है, यहाँ शिव और पार्वती का विवाह स्वयं विष्णु जी ने करवाया था, त्रियोगी नारायण मंदिर। अगर आप दोनों वहाँ मन्नत मांगोगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी।

आपका चिंटू आ गया। चिंटू बड़ा हूँ मैं, तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊँ।

0: स्कूल की तलाश में है
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वही हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: Give me a second.
2: Hey, sorry, brother. Actually, she's my wife, and she's mentally unwell.
0: अब कुछ भी याद नहीं है उसे. सब कुछ भूल चुकी है. बस राज राज करती रहती है. पता नहीं कौन है ये राज.
2: Hey, sorry, bro. I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे. मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था.

आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर। शाम 4 से 4:00

0: पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरती।

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं।

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनें और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृषि मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीणा। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। और दोस्तों गंगापुर सिटी का 28 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। अपील करना चाहूँगा, आज वार्ड पार्षद के चुनाव है गंगापुर सिटी में, और सभी भाई और बहनों से मैं यही अपील यही अर्ज करना चाहूँगा कि अपना मत सही जगह पर दें। जागरूक होने के नाते आप अपना मत अवश्य देने जाएं, थोड़ा समय निकाल कर।

0: हेलो हेलो
1: हेलो सर
0: जी, नाम बताएं।
1: मुस्कान।
0: मुस्कान कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं मुस्कान, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: पैरों में बंधन है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मुस्कान जी, आपकी ख्वाहिश है।

0: क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हेलो, आपका नाम बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
1: कौन तुझे यूं प्यार करे?
0: कौन तुझे यूं प्यार करे? बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
1: हेलो सर।
2: हाँ बताओ सर, आपका कहाँ से बात कर रहे हैं? गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फोटो पे आंसू लेके आंखों से मुस्कुराए।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना।

0: 93.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें,

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं।
1: अंजलि।
0: अंजलि कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं अंजलि, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस?

0: हेलो सर, नमस्ते
1: सर। नमस्कार, नाम बताएं आपका?
0: यशवंत पटेल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: बागा जिला मठपुरी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो नमस्ते सर।
1: नमस्ते जी, नाम बताएं आपका।
0: मैं शांति पटेल बोल रही हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश।
1: शांति जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो पे से?
0: देखा है पहली बार साजन को।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी प्रवाइस रेडियो पे। कुल के दर

0: TBS
1: सर कुलदीप मीणा मीणा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: यहाँ बोल रेडियो से।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो टीवी पे?
2: मुझे विजय देव कोड़ा का गाना सुना दिए नया वाला।
1: कौन सा गाना है सर?
2: गाना का नाम आप क्वेश्चन सुना दीजिए। विजय देव कोड़ा है इसका नाम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: the stories from the Madras Presidency. A quarter of the population perished.
1: वो हमारी धरती को निगलने सात समंदर पार से आया है।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में सीखने, संस्कार, अनुशासन और

0: थलमानी जी,
1: सूर्या रंगापुर सिटी से। सर
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएफ पे?
1: सर आज गाना सुनना चाहते हैं दिल नशी दिल नशी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएफ पे कॉल किया, धन्यवाद।

शाम में जब जुलम ढाण वाले डाकू आन बढ़े तो लोग की चीख जंगल तक पहुंची। मेरा दादा नूकरिया करता, जंगल में रहने वाला हर आदमी डाकू नहीं होता, कुछ भाग्य होया करे, हालात के सताए हुए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: कृष्णा मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
1: गंगा पट्टी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: इश्क बावला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।

0: मैं कुमार सैनी।
1: विनोद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से मोकल।
1: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
0: ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में बोल के धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नाम बताइए सर आपका।
0: अभिषेक।
1: अभिषेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: न्यूयॉर्क सिटी।
1: बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो से?

0: जी नाम बताएं सर।
1: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान सर। जी
0: रूपचंद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहिए से?
1: आज ये सुना पिक्चर का नाम है मैदानी जंग। गीत के बोल है कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कौन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी प्रजा पर कहाँ से बात कर रहे हैं सचिन जी गंगापुर से बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से
1: कम हमारे डीजे पे मत कीजिए
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश
2: It's vampire.

0: हेलो, नाम बताए सर।
1: हरिओम सैनी।
0: कहाँ से बात करते हैं सैनी जी?
1: गंगापुर सिटी से।
0: गाना बताए सर, कौन सा सुनना चाहेंगे रेडियो पे?
1: तेरी याद आती है बहुत।
0: बिल्कुल सुना रहे।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:09 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं।
2: सिमरन पटेल।
1: सिमरन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सागर मध्य प्रदेश।
1: बताएं सिमरन जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
2: हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सिमरन जी आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद
2: जी सर।

0: जी नाम बताएं सर।
1: उमाशंकर पटेल बोल रहा हूँ सर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं उमाशंकर जी?
1: सर मैं तो डेली भोपाल मध्य प्रदेश से लगाता ही रहता हूँ सर, आप मुझे तो आप जानते ही होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे
1: आज? आज सर मैं सुनना चाहूंगा मेरा जिया ना माने, वो सारी तो पता है सकनी का बनता है।
0: दोबारा बताएं सर गाना।
1: मेरा जिया ना माने
0: अपने साजन के।
1: बिल्कुल सही, सपने का आनंद।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, बहुत ही बेहतरीन गाना है रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: हेलो, मेरा नाम श्वेता है।
0: श्वेता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस पे?
1: आप भजन चला सकते हैं?
0: जी बिल्कुल चलाएंगे।
1: तीन वाण के धारे चला दीजिए।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में। खुल गया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी सर नमस्ते, मेरा नाम खुशी है।
0: खुशी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर सिटी से बात कर रही हूँ।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो पे?
1: अगर तुम चाहते हो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो पे, खुल के धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो,
1: नाम बताए सर।
0: अनिल गुजर,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं गुगल जी?
0: गंगापुर सिटी से।
1: गाना बताए
0: सर, सिद्धू मूसेवाला चला दो।
1: ओके सर, छोड़ो।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: चौधरी अर्ज कर रहा हूँ सर, शिवाजी देशी।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो से?
0: गाना तो सर मेरा सवाल बॉलीवुड सुपर हिट सुनवा दूं क्या?
1: बिल्कुल बताएं सर।
0: सोनी कुड़ी हो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी, सुनता हूँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: सर दशरथ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं दशरथ जी?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर नैना तोरे गजरारे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: जी नाम बताए सर आपका।
1: हेलो,
0: नाम बताए सर।
1: सौरभ मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मेरा को?
1: जंगलपुर से।
0: गाना बताए सर।
1: बैरन।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

0: चाहिए तेरी प्रीत में नहीं।
1: हेलो
2: हेलो,
1: सब नाम बताएं।
2: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे, मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहिए आज?
2: कितना हंसी में चेहरा सुनवा देंगे दिल वाले से।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डेज़ में। कुल के धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नाम बताएंगे?
0: शैलेंद्र सिंह उदय।
1: शैलेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: सर मासूम शर्मा का चला दो।

0: नंबर जी सर नमस्कार, नाम बताए आपका?
1: केशव शर्मा और कृष्णा वाणी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जानी दोस्त फिल्म का गाना सुना दीजिए, जीवन हो बना जीवन।
0: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश से। बेहतरीन सा गाना रेडियो डेज में सुन के धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: विष्णु।
1: विष्णु कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: दिमनापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: बताओ, याद है तुमको जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: जी नाम बताएं।
1: सागर मीना।
0: सागर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर सिटी।
0: बताओ सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जिस दिन तुम मेरी हो गई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो

0: हूँ।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: रूप दीवानी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कर्नाटक से।
0: गाना बताओ सर।
1: गीत बिचारा से।
0: बिल्कुल सुना रहे।
2: हेलो,
0: नाम बताए?
2: अरुण मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अरुण मीना जी? हेलो,
2: गाने के बोले तैयार मूवी की धुन।
0: बिल्कुल सुना रहे सर, आपकी फरमाइश से कला।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका?
0: चेतन सैनी।
1: चेतन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: हमें ना भूलाना सजना, हमें ना भूलाना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का हिस्सा हूँ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग।
1: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

0: हाल है?
1: बहुत बढ़िया सर।
0: नाम बताए आपका?
1: गंगाधर सावंकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र।
0: गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज रेडियो डीएस से?
1: कह दो तुझे क्या कुछ कहूँ, दिल में मेरे आज क्या है, दीवार फिल्म का।
0: ओके, सुना रहे हैं सर आपकी फिल्म इस पे गाना।
1: बहुत धन्यवाद।
2: दिल में मेरे आज क्या,

0: हेलो हेलो जी, नाम बताए सर।
1: अमित सैनी।
0: सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: जाना बताए सर।
1: छोटा कावड़िया।
0: बिल्कुल।

0: हेलो,
1: नाम बताएं आपका।
0: अभिषेक गुर्जर, गंगापुर सिटी।
1: अभिषेक कहाँ से बात कर रहे हैं? गंगापुर सिटी से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ओके, सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करता हूँ। हेलो,

0: हेलो
1: नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं गुलशन?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो रिए से?
0: कुड़ी कवारी तेरे पीछे पीछे जाता कहाँ है सोया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: वीरेंद्र सिंह गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगा पर सिटी।
1: गाना बताए सर।
0: कंबल गाते हमारे बसेरे।
1: कौन सुना रहे हैं? हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
2: राकेश मीना।
1: मीणा जी कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगापुर से।
1: गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: चलते कुओं का सूरत तीन के चोरी करे हुसन त्यौहार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश से सॉन्ग। हेलो
3: It's vampire.

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मेरा नाम राज जखवार है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रामखंडी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: मियां कारा डाडा न्योली वाले का गाना है।
1: सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश कर।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नाम बताएं आपका?
1: अंकित प्रजापत।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रजापत जी?
1: गंगापुर से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आँख मेरी फिर भी रोई ना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो,
1: नाम बताए सर।
0: मेरा नाम अंगापुर।
1: गाना बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: चमलों की घाटी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: राकेश को आ रहा है।
1: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
1: राकेश मीना।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम जी?
1: गंगापुर से। नाम?
2: बिल्कुल। हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: नाम कल्लू।
2: कल्लू कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो टीवी से?
3: सैयारा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं कल्लू जी, आपकी फरमाइश पर। सैयारा।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मोहित।
1: मोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगा पर सिटी से।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
0: तेरी यादों की चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना।

दोस्तों अभी आपने सुना है लू फरमाइस कार्यक्रम। दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है, इस कार्यक्रम को यही समापन करके आपको लेकर चलते हैं आपके अगले कार्यक्रम की ओर। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस यानी खुशनुमा, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो ज़्यादा ठंड भी नहीं है। दोस्तों फिलहाल आप मेरे को एक चीज़ का ज़रूर बताएं, और आज मतदान है गंगापुर सिटी में वार्ड पार्षदों का, सभी से अनुरोध है कि आप सब शांतिपूर्वक मतदान करें। वो हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए।

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता

खान बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर गंगापुर सिटी। जी हाँ, बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल यानी ज्ञान और संस्कारों के साथ आधुनिक तकनीक से शिक्षा प्रदान करने वाला हमारे संभाग का पहला आधुनिक तकनीक शिक्षण विद्यालय, जहाँ आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनके संस्कारों, उनकी प्रतिभा और उनके सर्वांग

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: अपने मोबाइल पर नॉनस्टॉप गानों और मजेदार प्रोग्राम का भरपूर मजा लें।
1: दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों एक बजे से लेकर दो बजे तक अभी आपने मेरे साथ सुने नए तरह के कार्यक्रम, और दोपहर के दो बज चुके हैं। थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली बिसरी यादें।

0: entertainment. Log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है, उसका जन्म होता है, तो यहाँ पे आके मोह माया धन दौलत अपना ऐसो आराम देखकर ये भूल जाता है कि एक दिन सब ये माटी में मिल जाना है और हमें सब कुछ छोड़ जाना है।

बात का होता है। ये कोठी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये कार मेरी है, ये सुंदर पत्नी मेरी है, ये सुंदर बच्चे मेरे हैं। लेकिन परम सत्य ये है कि कोठी, बंगला, कार, पत्नी, बच्चे कुछ भी अपने नहीं है।

मनुष्य को अगर अपना मानव जीवन सफल करना है, इसको सफल बनाना है, तो सारे गलत काम छोड़ दे, अहंकार को त्याग दो, क्योंकि हमारे साथ हमेशा एक काल है जो कि काल बनकर घूम रहा है, इसलिए कभी भी गलत कार्य ना करें।

89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

प्रिया किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

अभिभावक नमस्कार, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखना चाहते हैं? तो आइए बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खेल खेल में,

0: शुरुआत आज ही कीजिए।
1: अरे सुन रे भाईला बापू केवे है, पढ़ाई जरूरी है।

जय श्री शंभू दोस्तों। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा सॉन्ग और कैसे लगी पूरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों को फैमिली को शेयर करके बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री शंभू, हर हर महादेव।

0: तो भाग के शादी कर लो।
1: यार क्या बोल रही है तू? हम शादी पापा की मर्जी से ही करेंगे, और अगर हमारा प्यार सच्चा होगा
2: तो महादेव हमें खुद मिलाएंगे।
3: मैंने सुना है एक जगह है, यहाँ शिव और पार्वती का विवाह स्वयं विष्णु जी ने करवाया था, त्रियोगी नारायण मंदिर। अगर आप दोनों वहाँ मन्नत मांगोगे तो आपकी इच्छा जरूर